0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो पियो ना
1: पियो ना लाई ची सो उठाओ हॉर्लिक्स
0: गर्मी मनाया स्विंग
1: रिफ्रेशमेंट पाप न्यूट्रिशन मीट
0: ची सो हॉर्लिक्स।

0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।
3: यस टाइम चेकका प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: वात्सल्य पोखरा क्लिनिक न्यू रोड पोखरा फर्टिलिटी होपलाइन 01-597-06-11
1: ओहो नाचर बे कति छाबा डिजाइन बे मारेगा ना खिनानी खनि तोला
2: खनै बिवा नाचर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाटी दुकान महेन्द्र पुलारी तोला
1: ए नैसाबा मारे दुकान पो मोना नै प्रेसलाई नै च्यारबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनै तो हो नि जगा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दिर मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छ्याबा कोपिम ओछे
2: हजुर किने झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिसा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
1: जग मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: तमुताइ रबा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय निल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-580-815 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान नि भिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाकोट।

0: फोन 061-433-342 433-640।
1: न्यू गैलेक्सी मावी नदीपुर पोखरा को भर्ना संबंधी सूचना शैक्षिक क्षेत्र में समर्पित व्यक्तित्वहरुको व्यवस्थापन में संचालित विद्यार्थी में अंतर्निहित बहुआयामिक प्रतिभा को खोजी विकास करते विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि में पढ़ाई होने इस न्यू गैलेक्सी मावी नदीपुर पोखरा में प्ले ग्रुप देखि कक्षा 9 सम्म सीमित सीट का लागि फारम वितरण भइरहेको छ। विस्तृत जानकारी का लागि न्यू गैलेक्सी स्कूल +2 कलेज अफ साइंस मैनेजमेंट कंप्यूटर टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट नदीपुर पोखरा
2: फोन 061-570-210-585-307।
1: Be the Galaxy Ends. Be the different. Dedicated to academic excellence since 1994.
0: विगत 22 वर्षदेखि निरन्तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त यस कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस पोखरामा
3: सर्टिफिकेट इन डेन्टल साइन्स,
4: सर्टिफिकेट इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी,
3: सर्टिफिकेट इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी
4: र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा 3 वर्ष कार्यक्रममा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा स्वस्थ शान्त एवं मैत्रीपूर्ण वातावरणमा अध्यापन गराइने।
3: हाम्रा विशेषताहरू आधुनिक प्रविधिबाट सञ्चालित उपकरण सहितको प्रयोगशाला,
4: कम शुल्कमा सहजै पढ्न र प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन।
0: कोर्सको बारेमा विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ।
4: एक्सलेन्स इन टेक्निकल एजुकेसन कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस न्यू रोड पोखरा फोन 061-588-364-580-725।

0: तपाई यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला रातिको 9 बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुन चाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।